0: देखी क्या मेरे को?
1: अरे नहीं देखा।
0: अरे बोल ना, मेरे को देखी कि नहीं?
1: हाँ मैंने तो देखा, पर उसने नहीं देखा।
0: तू किस खुशी में खुश हो रहा?
1: मैं क्यों खुश होऊंगा?
0: क्योंकि उसने मेरे को देखा नहीं।
1: मैं ऐसा क्यों करेगा?
0: मेरे को सब समझता है। उसने पलट के नहीं देखा भाऊ, इतनी बुरी खबर इतने चटकारे लेते हुए सुना रहा है।
1: भाऊ मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगा।
0: चल मैंने माना कि उसने पलट के मेरे को नहीं देखा, पर तू बोल देता कि उसने देखा तो तेरा क्या जाता है? मेरे को दो पल की खुशी तो मिलती ना।
1: आइडिया तो अच्छा है, पर अपने दिमाग में आया नहीं था।
0: हाँ दिमाग में क्यों आता? उससे मेरा घर बच जाता, तू मामा बन सकता था।

0: साहब, माल लोड हो गया है, चलें क्या?
1: तो जाने का?
0: हाँ तो ये सब ले लिया ना,
1: कुछ बजा नहीं ना, चलने ना हमने।
0: हाँ और क्या मतलब लिया
1: पक्का ना? नहीं माल लोड हो गया तो अपन निकलते।
0: हाँ कुछ बोला तो नहीं?
1: तेरे को बहुत मस्ती चढ़ रही है ना।
0: मैं हा? कौन सी मस्ती किया?
1: तेरे सब एड़े चाले समझ रहा हूँ मैं।
0: बताओ तो मैंने क्या किया?
1: मैं काम मन लगा के करता हूँ और तेरे को मालूम है मन कहाँ लगा हुआ है, फिर भी जिद करता रहता है, जाते है जाते है। चल अभी जाते हैं, नहीं रुकने का मेरे को, चल जाते हैं ना।
0: बात सुन, मैं समझ गया तेरे को जितनी देर रुकने तो रुक जा।
1: हाँ मैं तो रुकूंगा, मैं रुकूंगा, तू भी रुक और ध्यान से देख के बता उसने मुझे देखा कि नहीं। देखी क्या?
0: अरे वाह, बर्तन को ये दो बार घसती है फिर एक बार तेरे को देखती है।
1: ठीक है, सच बोल रहे? मेरा दिल रखने के लिए खाली फुकड़ का तू झूठ बोल रहा है ना?
0: तू सही समझा बाबू।
1: अबे इतनी जल्दी सच का को बोल दिया तूने? मेरी दो पल की खुशी भी तुझसे देखी नहीं जाती क्या? तेरे साथ माता खपाने से अच्छा उसके पास जाके पैर पकड़ लेता हूँ, वो खुद ही देख लेगी। मैंने मैंने रुकने वाला, मेरे को बहुत जोर का प्यार है, बात करने से मेरे को।
0: मेरी बात सुनने ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हुआ
1: यार, मैं भिखारी बन जाऊंगा? तू गएला कैसे रे? चल आता आखिरी बार झाड़ी मार, देख के बता मेरे को देख रही है कि नहीं।
0: सच बोलूं कि झूठ
1: बोलूं? झूठ बोलूं।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।